0: और जिस दिन आसमान अब्र से फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, उस दिन सच्ची बादशाही रहमान ही की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और पैगंबर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था और इसी तरह हमने गुनाहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने और मदद करने को काफी है।
1: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت

और वो के जब खर्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ न जरूरत से ज्यादा न कम। और वो जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते और जिस शख्स को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। कयामत के दिन उसको दूना आजाब होगा और वो जिल्लत और खारी से हमेशा उसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है।

0: फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मोजेजा। फिरौन ने कहा अगर सच्चे हो तो उसे लाओ दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त साफ अजदहा बन गई और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा। फिरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आएं।
1: तजुम्या सह

ललातन के देसी वन जे राजल्या अचु शिरल अदा

खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते

खुशखबरों में पैसे के लेने के सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हमीस जुम्मे छंछर आचर सोम।

ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो, पेश सॉफ्ट ऐं गिजो सां हर क़िस्म लाइ हाणे आसान ब्यूटी क्रीम। ख़ूब हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो रायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: रोशनी है जो काफिल तरफ सहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार सर कुर्बान अली मेमन अकेडमिक ब्लॉक जो इनकाद मेहनती मशाक तजुर्बेकार तदरीसी अमलो सरसब्ज बागीचो बाइक कार पार्किंग बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमेस्ट्री बायोलॉजी जो लेबॉरेटरियूं ऑडियो विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमेस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी इंग्लिश से खसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट जरिए मेडिकल इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन जो मैदान उते मुनक़िद मुकाबला तहरीर तकरीर जहनी आजमाइश का मुकाबला पैंजे अखिन के नूर न्याणन प्यारन पुट तलीम तरबियत लाए अज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर जी विजिट करियो वधिक राबते लाए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम कॉन्टेक्ट नंबर 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर कॉन्टेक्ट नंबर 03013865453
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा चौक सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब
1: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बन
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किसे हलंदी आए
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

अमेरिका एक भेरो बीहर ईरान ते फिजाई हमला शुरू करे छड़िया। टें डी भी लगातार बमबारी जो सिलसिलो जारी। ईरान जा शहर कोनार्क जो दादक बोशहर ए बंदर अब्बास धमाकन से गूंजी उठा। परदेही खबरू इदारे मौजूद बोशहर ए चौदाक में छह धमाकन जा आवाज बुधा वया। कोनार्क शहर में टे धमाका थे। बंदर अब्बास में भी जोरदार धमाका बुधा वया।

0: पीर जो गोट भरसा नारे जा बिरादरी जे बिन धुरिन में संगावती तकरार तां झेड़ो फायरिंग में एक ही घर जे चैन भातिन समेत पंज जणा कतल एक बारड़े समेत ब जणा जख्मी कचे जे फेज मोहम्मद वारे इलाके में झेड़े दौरान गोलियो लगण सबब एक ही घर जो फतेह मोहम्मद संदस पुट राजा भाइटी राबिया ए भेण जीजा कतल थी वयूं। गोलियों लगण सबब सोराब नारे जो भी मारजी वयो। मारजी वयलन जा लाश ए जख्मी ईदन नारे जो ए बारड़ो अली रजा नारे जो अस्पताल मुंतकिल। धुरिन में चिकतान बरकरार। वडे वजीर ए सूबाई घरू वजीर पारा वाके जो नोटिस रिपोर्ट तलब करे वरती।
1: आज सुबह हमारी जमीनों पर ट्रैक्टर चल रहे थे जिस पर इन वैशियों कातलों दरिंदों मुर्तजा चांडे चिकंदर चांडे तकरीबन 10 हथियारबंदों ने अंधाधुंध फायरिंग करके ट्रिपल मर्डर केस के मशहूर रियाज चांडे मेरे कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर सवाल करती हूँ सबका जिम्मेदार कौन है। मैं आईजी साहब से अपील करती हूँ, मैं हायर अथॉरिटीज से अपील करती हूँ, चीफ ऑफ आर्मी साहब से अपील। कानून और आइन के आश्रय एक जंग लड़ रहे और पहले भी हमने अपने तीन प्यारों के जना देखा है। आज मेरे नौजवान कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस सबका जिम्मेदार कौन है? सिंध पुलिस का इसमें मनफी रवैया, सिंध पुलिस का इसमें दमदारी वाला रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। आईजी साहब से गुजारिश करती हूँ कि इस पर नजरसानी करें और स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस मामले को रोका जाए। हमारी जानों को खतरा है। हमारे गाँव में आज फायरिंग करके हमारे नौजवान कजन को कत्ल कर दिया गया।
2: ڈیڑھ برسان چانڈیا برادری بندرن میں جڑے دوران عمر باب چانڈیا نوجوان سوٹ قتل جڑے قتل کیس میں بری تھل جوابدار مرتضیٰ چانڈیا سمیت 12 جوابدارن خلاف کیس داخل عمر باب چانڈیا چواد جڑے قتل کیس کی اپیل کرنے تے چوتھو مانو قتل کیا ویو مرتضیٰ
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور۔ ودیگ رابطے جے لائے 0300-3583-569-0300-3859

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर केल रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची चुका आयो मां जो मेजबान ने मतलब जुड़े जो समझा अखियों जेकी कुछ दिसन थियों तन के कबूल कन थियों या रद्द जहन कंदो आहे असांजी पूरी हयाती में के शयूं अहिड़ियूं बि साम्हूं ईंदियूं आहिनि जिन खे कल पसंदि कयो वियो या सुहिणियूं लॻंदियूं हुयूं से अॼु नथियूं वणनि ऐं कल जेके शयूं असांखे सुहिणियूं न पई लॻियूं से अॼु ख़ूबसूरत छो पियूं लॻनि इन सवाल जो जवाबु हीउ थी सघे थो त ॾिसण वक़्तु ज़हन जी कैफ़ियत कहिड़े क़िस्म जी आहे हूअं बि कंहिं ॾाहे जो चवणु आहे त ख़ूबसूरती इंसान जे अंदर में मौजूदु हूंदी आहे उन में को बि शक नाहे छो त जॾहिं इंसान जे ज़हन में ख़्याल सुठा हूंदा त संसार बि सुठो लॻंदो आहे हिन संसार में अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेकी हर शइ में सूंहं खे ॾिसंदा आहिनि ऐं कख हुजे पन हुजे हर हिकु में सूंहं जो जल्बो ॾिसनि था जॾहिं हर शइ में सूंहं जी सम्झ अची वञे थी त पोइ दिलि बि हरदमि ख़ुशि रहंदी आहे पोइ चहिरो भले मासूम छो न हुजे त उनखे चवंदा आहिनि त ॾिसण जूं अखियूं पंहिंजियूं आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त सिक बि हुजे ऐं सॼण न मिले इहा सॼी ॻाल्हि आहे अखियुनि जी

जी समय न ॻाल्हि कंदासीं राति जे वक़्तु अवां अंगण ते जॾहिं सुम्हंदा आहियो त आसमान ते सितारनि जी सूंहं में चंड खे अवां ॾिसंदा आहियो यकीननि उन वक़्तु अवां चंड बाबति कुझु न कुझु सोचींदा ज़रूरु हूंदव त चंड असुल में आहे छा मां तव्हांखे थोरी साइंस जे हवाले सां चंड जे बारे में अवां ताईं मालूमात पहुचाईंदुसि त साइंस था चवनि था त चंड जो ॾींहुं राति ज़मीन जे ॾींहुं राति खां 14 दफ़ा वॾो आहे ऐं चंड ते ज़मीन जो पाशो मुकमिल चंड ग्रहण वक़्तु पवंदो आहे ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी चकर ॾियण वक़्तु 2000 मैल फी कलाक जी रफ़्तार सां हले थो ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी 27 ॾींहं 7 कलाक ऐं 43 मिंटनि में हिकु भेरो चकर ॾिए थो साल में 13 भेरा चकर ॾींदो आहे ऐं चंड ऐं सिज विच में 9,27,72,000 मुफ़ासिलो आहे चंड ज़मीन खां बि ज़मीन खां 2,29,857 मैल परे आहे ऐं चंड जो क़तर बि 2,160 मैल आहे ऐं चंड जी रोशनी 1.33 सेकंडनि में धरतीअ ते पहुचे थी त समय पंहिंजो अवां ताईं चंड जे बारे में कुझु मालूमात पहुचाईसीं पर शमन मीराली चंड जे हवाले सां कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे गॾिजी पिया ॿुधऊं।

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: मेरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
2: हाणे अचो मेरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मीरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

ऐं नंढनि ॿारनि में हॾनि ऐं जोड़नि जा मसाला, फ्रैक्चर, फिरियल पेरनि ऐं जंघुनि खे ठीकु करणु, हॾनि ऐं जोड़नि जे हर क़िस्म जो

ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੁਸਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਾਹੀ।

सुनियो से बीन वाली इश्क मोहब्बत महारा घटिया भूल गई दावा दीन वाली पार नदी दे पया पुकारा तकबीर जीवे तलकी

जिसम जा प्रोग्राम रोशन सुबह में वापसि चुका आहियूं ऐं पाण ॻाल्हि कंदासीं इश्क जी। त ज़रूरी न आहे त इश्क जेको आहे सो कंहिं सां बि थी सघे थो, कॾहिं बि थी सघे थो, ऐं इश्क जी गहराई में पाण जेको आहे सो नाहियूं वेंदा। हक़ीक़त में हक़ीक़ी इश्क उहो खोरो आहे जंहिंमें सवाइ बाहि भरण जे ॿियो कुझु बि नाहे थींदो। जितां बाहि जा ओला बबड़ करे निकिरंदा आहिनि, जिते सिर्फ़ ई सिर्फ़ तपश ऐं ताब हूंदो आहे। इश्को जॾहिं बि जंहिं वटि आयो आहे, तंहिंजी हस्ती, तंहिंजो वजूद, तंहिंजी दुनिया में तंहिंजी ज़िंदगी बदिलजी वेंदी आहे। बसि पोइ इश्क जा ओला अंदर में मच मचाए छॾींदा आहिनि। इश्क त उहो रस्तो आहे जंहिं ते हलंदे सवाइ ॾुखनि जे ॿियो कुझु बि नाहे मिलंदो। पर बावजूद उन्हनि सभिनी कैफ़ियतुनि जे ऐं मंज़रनि, इश्क जो नतीजो ॾाढो वणंदड़ थींदो आहे। अंदर में इश्क जॾहिं पची रास थींदो आहे, तॾहिं समूरो इंसान हिकु अखि बणिजी पवंदो आहे ऐं समूरी दुनिया हुन जे अॻियां पधरी पट वांगुरु थी पवंदी आहे ऐं समूरा लिकल लिकाव साम्हूं अची वेंदा आहिनि। तॾहिं चवंदा आहिनि त आशिक मजबूर आहे भले केॾो बि कंधार हुजे।

जी समिन प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन जा नाला खणंदासीं जिन मेहनत करे इनबॉक्स में भी कुछ दोस्तन नाला मोकिलिया आहिनि फेसबुक ते बि ऐं लाइव कॉल ज़रिए बि दोस्तन जा नाला अवां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं ऐं नाला आहिनि अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी उन्हनि सां गॾु आहे नूर मोहम्मद सोलंगी ऐं नूर अहमद सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी मोहम्मद अज़ीज़ जरवार वसीम जरवार बि मीरपुर ख़ासि खां फ़ोन कई आहे ऐं ख़ालिक लाशारी बि भाउ मीरपुर ख़ासि खां ऐं चनेसर भेण आज़ाद भेण मोरे खां बरकत अली सांगी हैदरी सदाकत अली सांगी ॻोठ विकिया सांगी लॻ धामरान खां शहज़ादो रिंद ॻोठ खां ऐं सुहारो शाह खां इमदाद जतोई ख़ालिक जतोई मुबशर किफ़ायतुल्ला फारूक हैदर जतोई दादू खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी आसिफ पहमर ऐं शबीर पहमर उनड़ चौक लाड़काणे खां ऐं रिहाना ख़ान बखर खां हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ रिंद जीअंद रिंद जेकाबाद खां राशिद आवाण मेरापुर खां फ़ोन कई भाउ जी वॾी महिरबानी क़ुर्बान अली ख़ासकेली ॻोठ झंडो मरी खां ऐं झंडे मरी खां पोड़ो मरी बि फ़ोन कई फ़क़ीर मरम अली जतोई ॻोठ आगा ख़ान जतोई खां यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद इब्राहिम संदीलो ॻोठ खां मोहम्मद हारून संदीलो मोरो खां ऐं फ़तेह मोहम्मद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो बीबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो ॻोठ सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां ऐं रांझन कोरी लालचंद कोरी ॻोठ खां ऐं असमा अमीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद शरीफ़ भुट्टो नादर भुट्टो बलोचिस्तान खां ऐं ॻोठ मोहम्मद मूसा बालादी खां शमीर बालादी आरिफ़ बालादी एजाज़ बालादी मेवो ख़ान ऐं रज़ा बालादी ऐं भाउ जमाल कुंभार बि फेसबुक ते मैसेज कयो भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं ज़ाकिर चांडियो लाड़काणे खां तस्मीन ख़ूबसूरत नगमो आहे अव्हां दोस्तनि जे नाम।

जी हा समय नाहिद अख़्तर जे इन ख़ूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। हयाती रही तव्हां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। तेसि ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

0: It's 11.
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमेरिका ईरान जे कवेते हमलन बाद पाकिस्तान समेत बेन सालसन सालसन मुल्कन समे सिफारती सिफारती कोशिशों तेज करे छड़ी अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एग्जिट्स मौजूद पाकिस्तान ए कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान चिकटान घटाण एटमी प्रोग्राम ते गालिन जी बहाली लाए कोशिशों करे रहा है। बिनी मुल्कन जे नुमाइंदन अमेरिकी ए ईरानी इख्तियारन सा भी गालायो आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान सा मुकम्मिल भी ना है।
1: अमेरिका जे टे ॾींहं बाद ईरान ते बमबारी। ईरानी शहर कोणार्क चोगादक बोशर बंदर अब्बास ते मिज़ाइल हमला। ईरान जा ॿ अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया चवंदा त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो।

के पीजे इलाके कोहाट में पुलिस जो कानून लागू कंदड़े दारन सा गड ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारजी वया पुलिस मौजूद गुजी इतला ते गडियल ऑपरेशन कयो वयो ऑपरेशन जे नतीजे में मारजी वयल दहशतगर्द केतरन ही पुलिस ऑफिसरन जी शहादत में मुलविस हुआ वधिक जांच जारी है।

0: लक्ष्य गुलाम शाह वे जो सखर और टाण जातल शख्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकिल सखर शिकारपुर तां मंगी फ्लोर मिल लगन जातल शख्स जो लाश मिलियो तला ते लक्ष्य गुलाम शाह पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो पुलिस ॿुधायो आहे त लाश आईस जे मवाली जो लॻे पियो वधीक जांच करियूं पिया
1: ऐं कंबर वेझो ऑटो जे दुकान खे बाहि लखे रुपियनि जो सामान सड़ी वियो भुट्टो चौक ते कायम फिदा हुसैन लाखो जे दुकान खे बाहि लॻी वई समूरो सामान खाक दुकानदार जो चवण आहे त दुकान में पयल 12 लख रुपया रोक ऐं लखे रुपियनि जो सामान पिणी

0: मौजूद इरशाद ऑटो से पैंटी होंडा मोटरसाइकिल जी कराओ ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जह में मिले थी मोटरसाइकिल जी कार करदगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटो हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
3: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0383 00 33 8 55 69
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बे डरंदी
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान जो शहीद सुप्रीम लीडर आतुल्ला खमनाई मस्जिद में मिट्टी माओ हवाले, शहीद अली खमनाई खेदरत इमाम अलगज़ा जो रोजे के आते में मिट्टी माओ हवाले कह वो जनाज़े नमाज़ में सपुट आयतुल्ला मुस्तफ़ा खमनाई पढ़ाई शहीद की तदफीन में हजारे मानू शरीक थिया। ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनाई शहीद आयतुल्ला खमनाई की ताज़ियती मिड़ाके में शिरकत कंदो। ताज़ियती मिड़ाको मगरब और ईशा की नमाज बाद थींदो।
2: अमेरिका ईरान के एक बे ते हमलन बाद पाकिस्तान समेत बेन साल्स मुल्क सिफारती कोशिशों तेज कर छो। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सिस मूजिब पाकिस्तान ए कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान चिकटान घटाण एटमी प्रोग्राम ते गाल बहाली लाय कोशिशों कर रहा है। बिन्हीं मुल्क के नुमाइंदन अमेरिकी ए ईरानी इख्तियार भी गाल है। अमेरिकी सदर डोनल्ड ट्रंप भी ईरान से मुकम्मिल जंग जो हामी ना है।
1: अमेरिका की टे डी पर ईरान की बमबारी। ईरानी शहर कोनार्क चौगादक्स बोसर बंदर अब्बास से मिजाइल हमला। ईरान जब अमरीकी अड्डन से जवाबी हमला। ईरानी मीडिया चवण है कतर बहरीन ए कुवैत में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाया वो है।
2: ईरान से टेक्निकल सतह जो गाल जारी हैं। मसले के सिफारती हल लाए पुरजम आयु अमेरिकी अमलदार के दावा। अमेरिकी परदेही मीडिया मौजूद तेहरान वाशिंगटन में टेक्निकल सतह जो गाल जारी हैं। अमेरिका जो मौकिफ वाजे है ईरान एटमी हथियार न रखंदो।
1: केपी के इलाके कुहाक में पुलिस जो कानून लागू कर इदारन संग ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारजी व्या। पुलिस मौजूद गुजरात लाद गल ऑपरेशन कर वो ऑपरेशन के नतीजे में मारजी वाल दहशतगर्द कितने पुलिस आफिसर की शहादत में मुलसो जांच जारी है।
2: कंडियारो भरसा हथियारबंदन की फायरिंग में जख्मी थियल व्यापारी नवाब शाह अस्पताल में दम धड़ी हवाले कर छो। मंगरिया शाख वट गोलियों लगन सबब जख्मी थियल व्यापारी नसीर कलोड़ो हयाती विञाए वेठो। लखी गुलाम शाह वेझो सखर रोड टाण जातल शख्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस चयो आहे त लाश आइस जे मवाली जो लगी रहियो आहे।
1: सुल में प्रिया कुमारी समेत अखबार थियल बारन की बाजियाबी लाइ जसकम की रैली। जसकम काकुड़न नमरोटी चौक का प्रेस क्लब तीन एहतजाजी रैली कड़ी। अगवाण जो अखबार थियल बारन की बाजियाब न थियण हुकूमत की नाकामी है। प्रिया कुमारी और फजीला सरकी के वारसन जो रड़ियों भी बुधण लाइ तैयार न।
2: कंबर वेझो आटोस के दुकान के बाह लखे रुपये जो सामान सड़ी रख थी वो। भुट्टो चौक से कायम फिदाउस लाखों के दुकान के बाह लगी वही। समूरो सामान खाक। दुकानदार जो चवण है त दुकान में पयल 12 लख रुपया रोक ए लखे रुपये जो सामान पिण सड़ी वो है। नोटिस वी वहार कई वे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306।

ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर नमाज़ खां इशा जे नमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे

0: कई लेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: में।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर एस

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: लखनऊ जी ताजियती मिड़ाके में शिरकत कर दो। ताजियती मिड़ाको मगरिब ऐशा जो नमाज बाद थी दो।
2: अमेरिका ईरान जी कवे ते हमलन बाद पाकिस्तान समेत बेन साल्स मुल्क सफारती कोशिशों तेज करे छो। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एग्जेप्स मौजूद पाकिस्तान है कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान चिकतान घटाने एटमी प्रोग्राम ते गालन जी बहाली लाए कोशिशों करे रहा है। बिन्हीं मुल्क के नुमाइंदन अमेरिकी ए ईरानी इख्तियारन सा भी गालायो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान सा मुकम्मल जंग जो हामी ना है।
1: अमेरिका पारा टेन पर ईरान से बमबारी। ईरानी शहर कोनाक चोगादक्स बोसर और बंदरअब्बास से मिजाइल हमला। ईरान जब अमरीकन से जवाबी हमला जारी। ईरानी मीडिया चवण है कतर बहरीन कुवैत में अमरीकन के निशानो बनाया वो।

0: ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जे सिफारती हल लाइ पुरअज़म आहियूं, अमेरिकी अमलदारनि जी दावा आहे। अमेरिकी परॾेही मीडिया मूजिबि तेहरान ऐं वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमेरिका जो मौक़िफ़ वाज़े आहे, ईरान एटमी हथियार न रखंदो।
1: केपी जे इलाइक़े कुहाट में पुलिस जो कानून लागू करण इदारनि सां गॾु ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारिजी विया। पुलिस मूजिब गुजरात इलाइक़े ते गॾियल ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन जे नतीजे में मारिजी वियल दहशतगर्द केतिरनि ई पुलिस ऑफिसरनि जी शहादत में घुर्बल हुआ। वधीक जांच जारी आहे।
0: कंडियारो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल वापारी नवाब शाह इस्पताल में दम धणी हवाले करे छॾियो। मंगरिया शाख वटि गोलियूं लॻण सबबि ज़ख़्मी थियल वापारी नसीर कलोड़ो हयाती विञाए वेठो। लकी गुलाम शाह वेझो सखर रोड ताण ॼातल शख़्स जो लाश हथ इस्पताल मुंतकिल। पुलिस चयो आहे त लाश आइस जे मवाली जो लॻी रहियो आहे। पीर ॻोठ भरिसां बि नौजवान जो लाश हथ आयो आहे। पुलिस मौजूदु फोती जी सुञाणप अब्दुल रहमान कलोड़ जे नाले सां थी आहे। संदसि खीसे मां नशे वारियूं शयूं मिलियूं आहिनि।
1: फैरपुर भरिसां छेड़े में क़तल थियल पंज ॼणनि जा लाश पुलिस वारसनि खे न ॾिना। सर्द खाने में पियल गोडिसाक नारेजो में मारिजी पियल फतेह मोहम्मद राजा नारेजो ऐं ॿिनि जी तदफीन न थी सघी। इंतिज़ामिया ॿिनि औरतुनि समेत पंज ॼणनि जा लाश सिविल अस्पताल जे सर्द खाने में रखाए छॾिया। वारसनि मौजूब पुलिस लाश ॾियण खां इनकारी आहे।
0: मेहड़ वेझो उमेरुबाब चांडियो जे सोठ जे क़तल बाद धुरियुनि में छिकताण। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पुलिस मुक़रर, धुरियूं पंहिंजनि ॻोठनि ताईं महदूद। वधीक ॿ ॼणा गिरफ़्तार।
1: मिठियाणीअ में ज़री पाणीअ जे खोट सबब फसल सड़ण लॻा। आबादगारनि जो एहतजाज। ॻोठ लेटनगर चांडियो जे आबादगारनि अबजी मोरीअ ते पाणी जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। मुतासिर आबादगारनि चयो त आपाशी खाते जे अमलो हथ सां पाणी चोरी कराए रहियो आहे। पाणी न मिलण सां फसल सुकनि पिया। पाणी चोरी जो नोटिस वठी पाणी फराहम कयो वञे।
0: खानपुर लॻ ठुल वासी टे ॼणा हथियारबंदनि हथां यर्गमाल। फुरलुट मुतासिरनि जो इंडस हाईवे ते धरणो। मुतासिरनि जो चवण आहे त जेल पुलिस खाते में टेस्ट ॾियण लाइ वञी रहिया हुआसीं त पुलिस वर्दी पहिरियल लोहारियुनि फुरलुट कई। फुर थियल सामान वापसि करायो वञे। बेबदमनी ख़िलाफ़ सूमरा बिरादरी जो बदीन रोड ते धरणो। अमन बहाल कराइण जो मुतालबो।

0: जमायत इस्लामी कारकुनन एहतजाज कयो मुजाहिरिन चयो त आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियो आहे पोइ बि हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयार न आहे पेट्रोल वधीक सस्तो कयो वञे
1: लाडकाने में वकीलन जी कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्दन ए तदरसी अमले के तशद जो निशानो पाने वाले वाके खिलाफ रैली आमिर अली सौ एडवोकेट रफीक अहमद अबड़ो बेन मीडिया के बुधा तो एक सियासी जमायत 50 साल का कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्दन के तंग कर रही है
0: ठुल में प्रिया कुमारी समेत अगवा थियल बालन की बाजियाबी लाए जसकम की रैली जसकम कारकुन नमरोटी चौक का प्रेस क्लब ती रैली कढ़ी अगवाणन अगवा थियल बालन जो बाजियाब न थियण हुकूमत के नाकामी है प्रिया कुमारी ए फजीला सरकी के वारसन जो रड़ियों भी बुधण लाय तैयार न
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300 583 5769 0300 333 8569

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई
2: 3592 0
3: मुझे दुकान जी बे डरंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद

0: मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिस कहानी
3: 03013992836
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3350-569 03-00-33-8-55-69

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-91-896
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569 0300-3385-69

0: 0306 16 23 793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारी जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़र रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8-5-6-9।
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर, 0301-3865-453।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेहराबपुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
8: 0301-399-2836।
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पीएसटी एंड जीएसटी वेटिंग रूम इंतवारन जे मुस्तकबिल जे फैसले बाबत कमेटी जो इजलास जूनियर साइंस टीचर लाइ 55% मार्क्स खणंदड़ समूरन उम्मीदवारन के भर्ती करण जो फैसलो अर्ली चाइल्ड टीचर जी भर्तीन लाइ छोकरन के अवलियत देण जो फैसलो पीएसटी एंड जीएसटी बाबत अदालती फैसले ते कानूनी मुशावरत कई वेंदी। स्पीकर रवेस कादर शाह सदरत हेठ इजलास अपोजिशन लीडर अली कुर्शीदी ऐं ॿियनि मेंबर जी शिरकत। स्पीकर रवेस कादर शाह चयो जूनियर साइंस टीचर लाइ 55% मार्क खणंदड़ समूरन उम्मीदवारन के भर्ती करण जो फैसलो थियो आहे। अर्ली चाइल्ड टीचर जो टेस्ट पास करण 500 छोकरन के 15 ॾींहनि अंदर ऑफर लेटर ॾिना वेंदा। हिते त जीएसटी पीएसटी लाइ अदालती फैसले बाबति कानून वारी खाते सां मुशावरत कई वेंदी। सरदार शाह चयो तालीम खातो रुकलो कयो आहे। कमेटीअ पारां तालीम खाते खे ॿुधण ते थोरातो आहियां।
2: ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जे सिफारती हल लाइ पुरअज़म आहियूं अमेरिकी अमलदार जे दावा। अमेरिकी परॾेही मीडिया मौजूदु तेहरान ऐं वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमेरिका जो मौक़िफ़ वाज़े आहे, ईरान एटमी हथियार न रखंदो।
1: अमरीका जी टे ॾींहं भई ईरान ते बमबारी। ईरानी शहर कोनार्क चौकत बोस चार बंदर अब्बास ते मिसाइली हमला। ईरान जा अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया चवंदा त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो।
2: अमेरिका ऐं ईरान जे हिक ॿिए ते हमलनि बाद पाकिस्तान समेत ॿियनि साल्स मुल्कनि सिफारती कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्ज़िप्स मुल्क मौजूदु पाकिस्तान ऐं कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान छिकताण घटाइण एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हि ईरानी इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी न आहे।
1: गॾियल अरब इमारतनि खे अमरीका सां सहकार जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती कमेटी जे मेंबर इस्माइल कोसरी चयो आहे त यूएई पंहिंजे क़दमनि सां पाण खे ईरान जे दुश्मन वारी फ़हिरिस्त में शामिल कयो आहे। यूएई खे ईरान जे दुश्मन सां गॾु बीहण जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी।
2: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां गिलगित बल्तिस्तान जे नून लीगी असेंबली मेंबर्स जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म जे लीगी मेंबर्स खे जे बी जा मसला हल करण जी ख़ातिरी। शहबाज़ शरीफ़ चयो त गिलगित बल्तिस्तान जे अवाम सदाई पाकिस्तान सां वफ़ादारीअ जो अमली सबूत ॾिनो। गिलगित बल्तिस्तान जे तामीर ऐं तरक़ी अवलीन तर्जन में शामिल आहे।
1: गैर कानूनी दावतन खिलाफ़ कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौर ते सूबाई हुकूमत जो आहे। अदलिया जो बाक़ी आइनी अदालत नसल टावर खे ॾहण जो सबबु पढ़ंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम वापसि वठी छॾिया। आइनी अदालत फैसले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकुम जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट ते कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बिना ॾहण जा हुकुम नथा ॾेई सघजनि। हर केस में मुनसफ़ाणी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे। अदालत जो मक़सदु रुगो कानून मूजिबि कार्रवाई यकीनी पाइण आहे। वज़ीर-ए-आला हाउस में चौमासी जे वसकारनि ऐं बोर्ड बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद मलिक ऐं डीएमए चेयरमैन जी बि इजलास में शिरकत। सिंध ऐं वफ़ाक़ में चौमासी जे वसकारनि ऐं बोर्ड खे मुंहुं ॾियण बाबति सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। एन डीएमए ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 15 जुलाई खां 30 आगस्ट ताईं मामूल खां वधीक गर्मी ऐं बरसातुनि जो इम्कान आहे। आबाशी वारे वज़ीर जा अमकान शुरू थियो त सिंध हुकूमत चौमासी बाबति तयारियूं करे वरितियूं आहिनि।
2: वॾनि शहरनि में नाइट पार्टीज़ वारे कल्चर सबबु एड्स बखेड़जी रही आहे। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो इंकशाफ़। सेनेट कमेटीअ खे आगाही ॾींदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स जे इस्तेमाल ऐं नौजवाननि जे जिन्सी सरगर्मियुनि सबबु HIV पखेड़जी रही आहे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 3 ॼणनि जा लाश। कंडियारे में हथियार हुन तां ज़ख़्मी थियल वापारी फ़ौत। हैदराबाद जे इलाक़े पखी क़िले वेझो नामालूम शख़्स जो लाश मिलियो। सुप नी लखी गुलाम शाह वेझो सखर रोड तंगने जो लाश सुप न थी पीर जो गोड भरसा नौजवान जो लाश मिलो सुप अब्दुल रहमान कलोड़ो नाले से थी है कंडियारो भरसा हथियारबंद की फायरिंग में जख्मी थियल व्यापारी नसीर कलोड़ो अस्पताल में फौत थी वो कारण मालूम न थो
2: खैरपुर भरसा जेड़े में कतल थियल पंज जणन जा लाश पुलिस वारसन के न डिना सर्द खाने में पयल घोट इसाक नारेजो में मारजी वेल फतेह मोहम्मद राजा नारेजो ए बेन जी तदफीन न थी सघी इंतजामिया बिन औरतन समेत पंज जणन जा लाश सिविल अस्पताल के सर्द खाने में रखाए छड़िया जेड़े में मारजी वेल पंज जणन जा लाश वारसन के न मिलने खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल अदालत एस एस पी खैरपुर डी एस पी पीर घोट एस एच ओ फेज मोहम्मद के तलब करे वरतो
1: भेड़वे जो मिरबाब चांडो के सोट के कतल बाद धुड़ में चिकताण मुख्तलिफ़ हंधन से पुलिस मुकर्रर धुरियूं पैंजे गोठन ताई महदूद वधीक बजणा गिरफ्तार
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: खुशखबरी खुश

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3 85-569 0300-3-8569।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: वेटिंग उम्मीदवारनि जे मुस्तक़बिल जे फ़ैसिले बाबति कमेटी जो इजलास, जूनियर साइंस टीचर लाइ 55 सेकड़ो मार्क्स फ़ंडर, समूरनि उमेदवारनि खे भर्ती करण जो फ़ैसिलो, अर्ली जॉइंट टीचर जी भर्तियुनि लाइ छोकिरियुनि खे आवरत ॾियण जो फ़ैसिलो, पीएसटी ऐं जीएसटी बाबति अदालती फ़ैसिले ते कानूनी मुशावरत कई वेंदी, स्पीकर अवेस कादर शाह सदारत हेठि इजलास, अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी ऐं ॿिनि मेंबर जी शिरकत, स्पीकर अवेस कादर शाह चयो जूनियर साइंस टीचर लाइ 55 सेकड़ो मार्कूं खणण लाइ समूरनि उमेदवारनि खे भर्ती करण जो फ़ैसिलो थियो आहे, अर्ली चाइल्ड टीचर जे टेस्ट पास कंदड़ 500 छोकिरियुनि खे 15 ॾींहनि अंदरि ऑफर लेटर ॾिना वेंदा, जीएसटी ऐं पीएसटी लाइ अदालती फ़ैसिले बाबति कानूनी वाहिकाते सां मुशावरत कई वेंदी। सरदार शाह चयो त तालीम खां तो रुगो रोज़गार जो ज़रियो न आहे, 55 खां वधीक मार्कूं खणंदड़नि खे साइंस टीचर भर्ती करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कामेटी पारां तालीम खाते खे ॿुधण ते थोरायतो आहियां।
1: सरत जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहियूं। अमेरिकी अमलदारनि जे दावा, अमेरिकी परॾेही मीडिया मौजूदु तेहरान ऐं वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमेरिका जो मौक़िफ़ वाज़े आहे, ईरान एटमी हथियार न रखंदो।
0: अमेरिका जे 3 ॾींहं ईरान ते बमबारी, ईरानी शहर कुनाक, चोगादश, बस्टर, बदर अब्बास ते मिज़ाइल हमला, ईरान जा अमेरिकियुनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया चवण आहे त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकेरनि खे निशानो बणायो वियो।
1: अमेरिका ऐं ईरान जे हिक ॿिए ते हमलनि बाद पाकिस्तान समेत ॿियनि साल्स मुल्कनि सिफारती कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज़िप्स मौजूदु पाकिस्तान ऐं कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान चिकताण घटाइण एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि अमेरिकी ऐं ईरानी इख़्तियारियुनि सां बि ॻाल्हायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी न आहे।
0: मर्दनि खे अमरीका सां सहकार जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती कमेटी जे मेंबर इस्माइल कोसरी चयो आहे त यूएई पंहिंजे कदमनि सां पाण खे ईरान जे दुश्मन वारी फ़हिरिस्त में शामिल करे छॾियो आहे। यूएई खे ईरान जे दुश्मन सां गॾु बीहण जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां गिलगित बल्तिस्तान जे नून लीगी असेंबली मेंबर्स जी मुलाक़ात। वज़ीर आज़म जे लीगी मेंबर्स खे जेबी जा मसला हल करण जी ख़ातिरी। शहबाज शरीफ चयो त गिलगित बल्तिस्तान जी अवाम सदाई पाकिस्तान सां वफ़ादारीअ जो अमली सबूत ॾिनो। गिलगित बल्तिस्तान जे तामीर ऐं तरक़ी अवलीन तर्जन में शामिल आहे।
0: कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौर ते सूबाई हुकूमत जो आहे, अदलिया जो न आहे। अदालतूं पंहिंजे साम्हूं मौजूदु तकरार ताईं रहनि, गैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आइनी अदालत नसला टावर खे ढाहिण जो सभु बणजंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम वापसि वठी छॾिया। आइनी अदालत फ़ैसिले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकुम जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट ते कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बिना ढाहिण जा हुकुम नथा ॾेई सघजनि। हर क़िस्म जी मुनसिफ़ानी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे। अदालत जो मक़सदु रुगो कानून मूजिबि कार्रवाई यकीनी बणाइण आहे।
1: वज़ीर आला हाउस में चौमासे जे वसकारनि ऐं बोर्ड बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ऐं NDMA चेयरमैन जे इजलास में शिरकत। सिंध ऐं वफ़ाक में चौमासे जे वसकारनि ऐं बोर्ड खे मुंहुं ॾियण बाबति सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। NDMA ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मामूल खां वधीक गर्मी ऐं बरसातनि जो इम्कान आहे। आपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त सिंध हुकूमत चौमासे बाबति तयारियूं कयूं आहिनि।
0: वॾनि शहरनि में नाइट पार्टीज़ वारो कल्चर सबबु एड्स पकड़जी रही आहे। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो इंकशाफ़। सिनेट कमेटी खे आगाही ॾींदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स जे इस्तेमाल ऐं नौजवाननि जे जिंसी सरगर्मियुनि सबबु HIV पकड़जी रही आहे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 3 ॼणनि जा लाश हथ। कंडियारे में हथियारबंदनि हथां ज़ख़्मी थियल वापारी फ़ौत। हैदराबाद जे इलाइक़े पके किले वेझो नामालूम सुञाणप न थी सघी। लखी गुलाम शाह वेझो सखर रोड तां 1 ॼणे जो लाश हथ सुञाणप न थी सघी। पीर जो घोट भरिसां बि नौजवान जो लाश मिलियो। सुञाणप अब्दुल रहमान कलोड़ो जे नाले सां थी। कंडियारो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल वापारी नसीर कलोड़ो इस्पताल में फ़ौत। कारण मालूम न थियो।
0: कैबरबट सां जेड़े में कतल थियल 55 लाश पुलिस वासन खे न ॾिना। सरहद खाने में पियल घोट इसाक नारेजो में मारिजी पियल फतेह मोहम्मद राजा नारेजो ऐं ॿियनि जी तस्वीर न थी सघी। इंतजामिया बिन औरतन समेत पंजन जा लाश सिविल अस्पताल के सर्दखाने में रखाए छा जेड़े में मारजी पल पंजन जन लाश वारसन के न मिलने खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल अदालत एस एस पी खैरपुर डीएसपी पीरगोट एस एच ओ फैज मोहम्मद बंडू की अदालत तलब कर वरतो।
1: मेहड़ वेझो उमेर बाब चांडियो के सोट के कतल बाद धुरी में छिकता आण मुख्तलिफ हंधन से पुलिस मुकर्र धुरियों पैंजन गोठन ताई महदूद वधीक बजड़ा गिरफ्तार।
0: चौथे में कास के लिए बिरादरी के बिंदुन में जेड़ो एक जनो कतल तेरणा गिरफ्तार वापसन लाश रखी जाए आमरी स्टाफ जेड़े दौरान गोली लगन सब फिदा हुसैन कास के लिए मारजी वो पुलिस समय जवाबदार मकतूल धुरवारा पान में बाहर रहन कारण मालूम ना थी सको।
1: कोट गुलाम मोहम्मद लग बिन निंगरिन सा ज्यादती है कतल में मुलविस भूमे समेत ब जवाबदार अदालत में पेश अदालत बिन्हीं जवाबदारन के टिन दिन की जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छो गोठ वागरेजी में प्रेमी कोहली के कतल में मुलविस कांजी कोहली के मकामी अदालत में पेश कयो। पुलिस जो चवण है ते केस के हर रुख का जांच कर रहा हूं गिरफ्तार जवाबदारन का वधीक पुछा गाछा कई वेंदी केस में अगवाए ज्यादतीअ जा कलम शामिल कया व्या।
0: सिंध में प्रिया कुमारी समेत मोगली बारन की बाजियाबी लाइ एहतजाज दादू में सियासी समाजी कारकुनन जो पैदल मार्च कोटकी में जसकम तरफा प्रेस क्लब अगर बुकण ताल कैंप कायम सकरन में कौमी अवामी तहरीक पारा स्टेशन रोड का सिनेमा चौक ते रैली कढ़ी वही प्रिया समेत समरन बारन के बाजियाब कराने जो मुतालबो।
1: सिंध के मुख्तलिफ शहर में जमायत इस्लामी जी महंगा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04372 आई 0242-46-0100।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाबशाह। हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 2196 851

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: के लिए खुशखबरी ये है कि हम जूनियर साइंस टीचर जितने हमारे बच्चे पास हुए हैं हम इंशाल्लाह सबको अपॉइंट करेंगे। जितने बच्चे हैं 8700 बच्चे इंशाल्लाह उन सबको जल्दी ऑफर ऑर्डर भी दिए जाएंगे, उन सबको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया वही रहे अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिकमेंड किया है कि जितनी बच्चियाँ पास हुई हैं 500 के करीब जो हमारी बच्चियाँ अभी पास हुई हैं इनको विद इन 15 डेज ऑफर ऑर्डर दिए जाएं विद इन 15 डेज। और तीसरा जो इशू था, जो मेन इशू था, JST, JEST और PST वाला जिसके हवाले से ये कमेटी बनाई गई थी उस पर बहुत डिस्कशन हुई। पे एक कोर्ट का केस आ गया है जिसमें जिसकी वजह से कमेटी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस कोर्ट के केस का ओपिनियन ले लें लॉ डिपार्टमेंट के। लॉ मेकर्स जो इस असेंबली में बैठे हैं, जो कानून बनाते हैं, उन पे ये फर्ज होता है कि जब कोर्ट का कोई डिसीजन आए तो उसको माने।
1: मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का जरिया बनाना है, रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना। तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक की राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें। और फ्यूचर में अगर तालीम को ठीक करना है तो ये मसाइल आज हम नहीं होंगे, कल उठ के सामने जब खड़े आएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे सवाल कि आपने उस वक्त ये फैसला क्यों किया।
2: सिंधवे उस्तादी भर्ती बाबत जोड़ियल पार्लियमानी कमेटी जूनियर स्कूल टीचर्स लाइ 55 सैकड़ों मार्क्स खड़ंदड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती करण जो फैसलो करे वरतो। अर्ली चाइल्ड टीचर्स की भर्ती में छोकर के अबूरियत देने जो फैसलो PST और GST जी वेटिंग उम्मीदवार के मुस्तकबिल बाबत को फैसलो न थी सको। स्पीकर रमेश कादिर शाह की सदारत हेठ इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और बेन मेंबर्स की शिरकत। स्पीकर रमेश कादिर शाह चयो था जूनियर साइंस टीचर लाइ 55 सैकड़ों मार्कू खड़ंदड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती कर वो। अर्ली चाइल्ड टीचर की टेस्ट पास कदड़ 500 छोकर के 15 दिन अंदर ऑफर लेटर दिना वा। JEST और PST उम्मीदवार लाइ अदालती फैसलो अची वो है इन बाबत खाते से मुशावरत कई वी तो उन्होंने तो कर सकते। सरदार शाह चो तालीम खाते के रोजगार न पर तालीम जो जरियो बढ़ाणो पव। कमेटी फैसलो किया है GST और EST में फ्रेश ग्रेजुएशन के मौको दिनों वे।
3: क्या हम लोग खुशी करने में मजबूर हो जाए? खुदा का वास्ता है आप लोग खुद तो ख्याल करें। और बिना मना तो जाते हमने कुछ बुरा नहीं किया है।
4: सिंध के शऊर के बेवकूफ़ बढ़ाए वे मुसलसल असा के बेवकूफ़ बढ़ाए पे वे असा के बस तारीख के तारीख दिनी वे थी
5: गोरबी के ना मन CP के ना मन तो रोड पे वेछा अच्छा कर सकूँ
6: उन बिन दिन के अंदर असा नए तो इंशाला बिलावल हाउस के बहर पूरा अमन धरण में वेही रहा।
2: पार्लियामानी कमेटी असा लाइ ठही इन में असो जिक्र ही न थो। कराची प्रेस क्लब बहर धरणो हणी वेठल PST और GST की वेटिंग उम्मीदवार जो सख्त एहतजाज। केतर ही नारियों KTN न्यूज से गाल बोल दौरान लुड़क लाड़े वेठ बिन दिन बिलावल हाउस आड़ो धरणे जो चिताव। PST और GST के वेटिंग उम्मीदवार जो चवण है कमेटी में वड़ी उम्मीद हुई पर सपनी असा के मायूस करो रुगो रटा है तारीख मथा तारीख दिनी पी वे हाँ अस आपघात क्यों। बलोचिस्तान के इलाके खुजात में थाने से नाकाम हमले का सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द जनम भेड़ा। ऑपरेशन शबान दौरान मारजी वेल खारजी दहशतगर्दन अंग 5 तक थी। सिक्योरिटी जरिए मुजिब 5 जुलाई का शुरू कल ऑपरेशन शबान बहुत कार्रवाई दौरान मारजी वेल दहशतगर्दन जो मजमू अंग 75 थी है। दहशतगर्दन खिलाफ जमीनी और फजाई कार्रवाई जारी है। वजीरान से टेक्निकल सतह जो गाल जारी आन मसले के सिफारती हल लाय पुरजमायूँ आमदीकी अमलदार दावा आमदीकी पढ़ई मोटिया मूजिब तेहरान ए वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जो गाल जारी आन एक्स मूजिब पाकिस्तान समेत सालिस मुल्क भी चिमटाण के खात्मे लाय कोशिशों तेज कर छ्यून सालिस मुल्क एथमी प्रोग्राम से गाल बहाली लाय कोशिशों कर रहा है। अमरीका ईरान से हमलों की तरतीब कर छी अमरीकी अमलदार मूजिब ईरान खिलाफ फौजी कार्रवाई या मिसाइल हमला नाहन कया अल जजीरा की रिपोर्ट मूजिब अमरीकी अमलदार वाजह किया है तो हाँ ईरान से फौजी हमला न कर रहा है। ईरानी सरकारी टीवी मूजिब बंदर अब्बास में धमाकन जा इतला गलत आन वो शहर में भी धमाके की आवाज फजाई दिफाई निजाम जो हुआ बेन शहर में भी धमाकन वाली खबरू दुरुस्त ना सुप्रीम लीडर के कतल जो प्लान वरतो वो अमरीकी इसराइली क्यादत के सजा मिली ईरानी पासारन खिलाफ सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी है शहीद आयतुल्लाह के कतल की तारीख केर भी विसारे न सको बारन के कातिल अमरीकी फौज सजा देन जरूरी है। गैर कानूनी अडावतन खिलाफ कार्रवाई जो अख्तियार बुनियादी तौर सूबाई हुकूमत जो है अदलिया जो ना अदालतों गैर जरूरी मामलों में दखलत न कन वफाकी आईनी अदालत नसरा टावर के ढहण जो सबब बणजंदड़ सुप्रीम कोर्ट जो हुकुम वापस वी सकया आईनी अदालत फैसले में चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट दायरे का अगत वी वा हुकुम जारी किया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट से कानूनी घुर्जू पूरू करण बिना ढहण जहा हुकुम नथा दई सकजन हर केस में मुंसिफानी कार्रवाई सभी हक है। वजीर लाहौस में चौमासी के वस्तार ए बोर्ड बाबत इजलास वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक एनडीएम चेयरमैन की भी इजलास में शिरकत सिंध ए वफाक में चौमासी के वस्तार ए बोर्ड के मुंह डेण बाबत सरकार बढ़ाने का इतफाक एनडीएम में ब्रीफिंग दीदे बुधा तो 15 जुलाई का 30 अगस्त तीन मामूल का गर्मी।
7: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
9: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तियाब आई
8: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
10: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 03201800003।
11: माशाल्लाह फौजी पाई फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरा

0: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीवां सा मुखातिबायों जी मेहरापुर FM 94 था प्रोग्राम से अच्छी गाल साण करे हाजिर खिदमत अवां जो पेंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी सजणो असा की उम्मीद आहे तवां बिल्कुल ठीक ठाक ए सब खुश हुंदा जी खुश त जहान खुश असी हमेशा इहा ही दुआ ॾींदा आहियूं मुंहिंजो त वार वार थो दम दम दुआ करे कोसो लॻे न वाओ सजण खे खुदा करे कॾहिं बि अवां सजणनि खे कोसो वाओ न लॻे जिते बि हुजो खुश हुजो सुखिया हुजो सतावा हुजो दुखनि जो सुखनि जो हमेशा अवां सां साथ रहे ॾुख अवां खां कोहे दूर हुजनि सामिन सिहत आहे त सभु कुझु आहे तंहिं करे चवंदा आहिनि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे सिहत सभु कुझु आहे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि में असांजे स्टूडियो में मौजूदु हूंदा आहिनि सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु जेके मुल्की सतह जा डॉक्टर आहिनि जेकी अव्हांजे मेहरापुर शहर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते अंगारे ते मोकल आहे बाक़ी ॾींहं हफ़्ते जा सभई ॾींहं डॉक्टर साहिबु मौजूदु हूंदा आहिनि जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में डॉक्टर साहिबु सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर आहिनि मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि जिन में दम सहिको एलर्जी चमड़ी जूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं नक गले जो गुदूद नक जी हॾी वधियल हुजे उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कनि था गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि हेपाटाइटिस बी सी मादे जी अल्सर गोॾनि जोड़नि संदनि जो सूरु फालिज यानी अधरंगो मोहिड़ा चेहरे ते छायूं चेहरे जा दाग दबा चेहरे जी ख़ारिश मथे जो सूरु अधु मथे जो सूरु नज़र जी कमज़ोरी नक कन दिलि जा मर्ज़ उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि टीबी जलन कब्ज़ जिगर जा मर्ज़ हथनि ऐं पेरनि जो सिरण फट फुरणियूं जिस्मानी कमज़ोरी चिटी जी बीमारी ॾढ बुख जो न लॻणु मर्दनि ऐं औरतुनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि अवां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था 0301 21 96 851 ऐं असांजो लाइव कॉल जो प्रोग्राम बि साॻियो ई नंबर साॻियो ई आहे डॉक्टर साहिब सां सभ खां पहिरियां त असां डॉक्टर साहिब खे पंहिंजे प्रोग्राम में ख़ुश आमदी चवंदासीं डॉक्टर साहिबु अस्सलामु अलैकुम
2: वालेकुम अस्सलाम सर
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो तबियत ठीकु आहे अव्हांजी
2: ॾिसे अलाह ताला जा करोड़ अहसान
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेकी डॉक्टर साहिब खे ख़ुश आमदी चवंदासीं डॉक्टर साहिबु तमामु घणी महिरबानी तव्हां असांखे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾींदा आहियो अॼु कहिड़े मौज़ू ॼाणींदा साईं
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाहु अलैहि वसलम पहिरियां त सभु तारीफ़ूं उन रब पाक जूं जेको असांखे जारे थो खाराए थो रोज़ी ॾिए थो ख़ुशी ॾिए थो ऐं सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो असांजे प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि अव्हांखे ख़बर आहे त हर रोज़ हिन टाइम ते पेश थींदो आहे ऐं असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक हफ़्ते जा पंज ॾींहं जुमो छंछर आचर सूमर अरबा ख़मीस मेहरापुर शहर में कोटड़ी रोड ते वधण पोटा पेट्रोल पंप जे साम्हूं मौजूदु हूंदी आहे जेकी टाइमिंग असांजी हूंदी आहे सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं यादि रखिजो अंगारे जो ॾींहुं जेको आहे सो मोकल हूंदी आहे बक़ाया ॾींहं क्लिनिक ते मौजूदु आहियूं कॉन्टेक्ट नंबर असांजो अवां ते पहुची चुको आहे वरी बि हिकु दफ़ो ॿीहर पाण बि अनाउंस कयूं था इहो कॉन्टेक्ट नंबर हूंदो आहे कंहिं बि जेको आहे सो दवा जे हिसाब सां मालूमात जे लाइ कंहिं बीमारी जी मालूमात जे लाइ या टोकन नंबर वठण जे हवाले सां 0301 21 96 851 0301 21 96 851। असांजे प्रोग्राम से जी ॻाल्हि उनमें कोशिशि कंदा आहियूं त मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके बि बीमारियूं हूंदियूं आहिनि त FM 94 जे हवाले सां

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन आई औरतन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320 1800003

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारियर दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-5369।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: सबसे पहले जूनियर साइंस टीचर के लिए खुशखबरी ये है कि हम जूनियर साइंस टीचर जितने हमारे बच्चे पास हुए हैं हम इंशाल्लाह सबको अपॉइंट करेंगे। जितने बच्चे हैं 8700 बच्चे इंशाल्लाह उन सबको जल्दी ऑफर ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे, उन सबको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन क्राइटेरिया वही रहे अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। तो कमेटी ने ये डिसाइड किया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिकमेंड किया है कि जितनी बच्चियां पास हुई हैं 500 के करीब जो हमारी बच्चियां अभी पास हुई हैं इनको विद इन 15 डेज ऑफर ऑर्डर्स दिए जाएं विद इन 15 डेज। और तीसरा जो इशू था, जो मेन इशू था, JST, JEST और PST वाला, जिसके हवाले से ये कमेटी बनाई गई थी, उस पर बहुत डिस्कशन हुई। पे एक कोर्ट का केस आ गया है जिसकी वजह से कमेटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस कोर्ट के केस का ओपिनियन ले लें लॉ डिपार्टमेंट से, कि लॉ मेकर्स जो इस असेंबली में बैठते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन पे ये फर्ज होता है कि जब कोर्ट का कोई डिसीजन आए तो उसको माने।
1: मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का जरिया बनाना है, रोजगार देने का जरिया नहीं बनाना। तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक की राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफर लेटर्स इशू किए जाएं और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की जरूरत है हमें। और फ्यूचर में अगर तालीम को ठीक करना है तो ये मसाइल आज हम नहीं होंगे, कल उसके सामने जब खड़े आएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे सवाल कि आपने उस वक्त ये फैसला क्यों किया।
2: सिंध में उस्तादन जी भर्तियन बाबत जोड़ल पार्लियामानी कमेटी जो जूनियर स्कूल टीचर्स लाए 55 सैकड़ो मार्क्स खड़ंदड़ समूरन उम्मीदवारन के भर्ती करण जो ऐलान। अर्ली चाइल्ड टीचर्स की भर्ती में छोकरियों के अवलियत देने जो फैसलो, PST और JST के वेटिंग उम्मीदवारन के मुस्तकबिल बाबत को फैसलो न थी सको। स्पीकर अवेस कादर शाह की सदारत हेठ इजलास में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और बेन मेंबर की शिरकत। स्पीकर अवेस कादर शाह जूनियर साइंस टीचर लाए 55 सैकड़ो मार्कू खड़ंदड़ समूरन उम्मीदवारन के भर्ती कर वेंदो। अर्ली चाइल्ड टीचर के टेस्ट पास कदड़ 500 छोकरियों के 15 दिन अंदर ऑफर लेटर डिना वेंदा। JST और PST उम्मीदवारन लाए अदालती फैसलो अची वो है, उन बाबत कानून वारे खाते से मुशावरत कई वेंदी तो उन तो कर सकते। सरदार शाह तालीम खाते के रोजगार न पर तालीम को जरियो बनाने पवो। कमेटी फैसलो किया है JST और PST में फ्रेश ग्रेजुएट्स के मौको दिनों वे।
3: क्या हम लोग खुशी करने में मजबूर हो जाए, खुदा का वास्ता है आप लोग खुद को ख्याल करें। और बिना मना से जाते हमने कुछ बुरा नहीं किया है, हमने
4: सिंध के शऊर के बेवकूफ़ बढ़ाए वही मुसलसल असके बेवकूफ़ बढ़ाए पे वे असके बस तारीख के तारीख दिनी वे थी
5: रोड के ना मन CP के ना मन तो रोड से वेठा अदा कर सकूं।
6: बिन दिन के अंदर इंशाअल्लाह फिलहाल हाउस के बाहर पूरा अमन धरनो में वेही रहंदासीं।
2: पार्लियामानी कमेटी साल ठही में असो जिक्र ही न थो। कराची प्रेस क्लब बहर धरणो हणी वेठल PST और JST की वेटिंग उम्मीदवार जो सख्त एहतजाज। केतरी नारियों केतरी न्यूज से गाल बोल दौरान लुड़क लाड़े वेठी बिन दिन का ग्लोबल हाउस अडो धरने जो चिताब। PST और JST की वेटिंग उम्मीदवार जो चवण हो तो कमेटी में वही उम्मीदू हुई पर सभी असा मायूस किया रुगो डटा तारीख मथा तारीख डिनी पी वे हाँ अस आपघात क्यों। बलूचिस्तान में पाक फौज FC और पुलिस जो दहशतगर्द खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी। 24 कलाक दौरान 17 दहशतगर्द मार पंजन दिन दौरान मारजी वेलन जो अंक 69 थी वो। सिक्योरिटी जरिए मौजिब 5 जुलाई का शुरू कल ऑपरेशन शाबान में बेन कार्रवाई में मजमू तौर 69 दहशतगर्द मारे व्या। दहशतगर्द खिलाफ जमीनी और फजाई कार्रवाई जारी है। सदर वजीर आजम पारा कामयाब ऑपरेशन से फोर्सेस के भेटा पेश कई वही। सदर आसिफ अली जरदारी है पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी दुश्मन का बर्दाश्त न पी थे। पाकिस्तान खिलाफ टॉक्सीज के इस्तेमाल कदर कदें भी कामयाब न थन्दा। वजीर आजम शहबाज शरीफ है कंखे भी बलोचिस्तान जो अमन अमान तबाह करने की इजाजत न डिनी वी। मुल्क में दहशतगर्दी के पाणा पटे छदी पूरी कौम बहादुर फोर्सेस से गड बीठल है। ईरान बीहर गाल शुरू करण की दरख्वास्त कई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावा समाजी वेबसाइट से जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त असां बि ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं, पर ईरान खे आगाह करे छॾियो आहे त जंग बंदी ख़तम थी चुकी आहे। ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि, मसइले जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहियूं अमरीकी अमलदारनि जे दावा। अमरीकी परडे॒ही मीडिया मूजिब तहरान ऐं वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। एक्सक्यूज मूजिब पाकिस्तान समेत 40 मुल्कनि बीच चेकताण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। 40 मुल्क एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि ईरान सां मुकमल जंग जो हामी न आहे। अमरीका ईरान टिन ॾींहनि बाद हिक ॿिए मथां हमला आर्ज़ी तौर रोके छॾिया। अमरीकी अमलदारनि फ़ौज बि ईरान ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई या नवां मिसाइल हमला नाहिनि कया। अल जज़ीरा जी रिपोर्ट मूजिब अमरीकी अमलदारनि वाज़े कयो आहे त हू हाणे ईरान ते फ़ौजी हमला न पिया कया वञनि। ईरानी सरकारी टीवी जो चवण हो त बदर अब्बास में धमाकनि जा इतलाउ हलत आहिनि। बो शहर में बि धमाके जी आवाज़ फज़ाई दिफ़ाई निज़ाम जा हुआ। ॿियनि शहरनि में बि धमाकनि वारियूं ख़बरूं दुरुस्त आहिनि।
7: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए होंडा मोटर एड्रेस नस्त मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 07-35-9120।
9: खुशखबरी हाणे शहर मेहराबपुर में दाल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बहर डॉक्टर बशीर रोज़ानो शाम नमाज़ खां इशा जे नमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते जो आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक थरी रोड जे लाइ 03300300300335-69।
10: माशाला फौजी पाई फैक्ट गर्ल्स हालाणी रोड मेहरापुर, असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाई 12 इंच में प्लेन मौजूदु आहिनि। फौजी

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 3589
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज़ GFM 94।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जीएफएम 94।